0: हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉक 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, हियर इज फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20।

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा VFX ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, YRF स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे, और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

0: कभी कभी कुछ फिल्में रिलीज नहीं होती,
1: हमें मिल जाती हैं, जैसे ये फिल्म मैं वापस आऊंगा।
0: जब रिलीज हुई थी किसी ने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, फिर किसी ने देखी, किसी ने किसी और को बोल दिया यार ये फिल्म पक्का देखना, और बस वहीं से उस फिल्म की असली जर्नी शुरू हुई। इस दुनिया का सबसे पोटेंट और सबसे कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वर्ड ऑफ माउथ। ये इस दुनिया की सबसे ईमानदार पब्लिसिटी होती है, क्योंकि इसमें पोस्टर नहीं बोलता, इंसान बोलता है। और पता है इस फिल्म पर पूरी छाप इम्तियाज अली की ही है। उनकी फिल्में कभी मुझे थिएटर में समझ नहीं आई, घर आने के बाद समझ आई। कभी किसी तन्हा रात में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत के बाद, कभी जब जिंदगी ने वो सवाल पूछे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, तब लगा इम्तियाज फिल्म नहीं बनाते, वो एहसास छोड़ जाते हैं।
2: आजकल के जमाने के आप लोग जो यंग लोग हो ना, आप लोग और भी ज्यादा किसी चीज को ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप बहुत आसानी से रिलेशनशिप में जाते हो, ब्रेकअप करते हो, आगे बढ़ते हो, ये सब करते हो, बहुत आसान है आपके लिए। बट इस आसानी की वजह से ना एक्चुअली ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा लोनली हो गए आप लोग, और जो लोनली होता है वो ज्यादा ढूंढता है। विच इज वाई हमेशा मैंने देखा है कि जो यंग ऑडियंस होती है इस फिल्म में, वो ज्यादा इमोशनली देखती है, ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है।
0: शायद इसलिए कुछ फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं और कुछ धीरे धीरे लोगों के अंदर पहुंच जाती हैं। और अगर आप किसी फिल्म के बारे में बार बार अलग अलग लोगों से एक ही बात सुनने लगे तो समझ लीजिए पिक्चर हिट नहीं हुई है, पिक्चर लोगों तक पहुंच गई है। नंबर 15।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 14.

कभी नोटिस किया है, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक ही कंप्लेंट ट्रेंड करती है, बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाना बंद कर देना चाहिए। एंड देन बॉक्स ऑफिस उस बात का बिल्कुल उल्टा करारा जवाब दे देता है। तुझको कॉकटेल 2 का ये खूबसूरत रोमांटिक गाना इस हफ्ते नंबर 14 पर है। फिल्म शायद उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना बनी हो जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी कहानियां जरा देखिए, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, वेलकम टू द जंगल, धमाल 4, ये सब फ्रेंचाइज फिल्म्स हैं। वेलकम टू द जंगल को लाउड बोला गया था, धमाल 4 को आउटडेटेड कहा गया था। क्रिटिक्स खुश नहीं थे, सोशल मीडिया भी इंप्रेस नहीं था, लेकिन जब टिकट्स बिकना शुरू हुई तो लोग थिएटर्स पहुंच गए। एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्रोड्यूसर्स इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्रोबेबिलिटी में करते हैं। एक नई फिल्म को पहचान देने में करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज अपनी पहचान लेकर आती है। और शायद सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम सीक्वल देखने जाते हैं और घर आकर ट्वीट करते हैं, बॉलीवुड शुड स्टॉप मेकिंग सीक्वल्स। यार हर सीक्वल अच्छा नहीं होता और हर फ्रेंचाइज चलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक ऑडियंस टिकट खरीद रही है तब तक पार्ट 5 भी बनेगा, पार्ट 6 भी बनेगा और पार्ट 7 भी बनेगा। और इस वक्त उसी सीक्वल की दुनिया से नंबर 13 पर है साड़ी, धमाल 4 से नंबर 13।

0: Mirchi. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 12.
2: Katl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

यू नो समटाइम्स एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क कमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल होना हो मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997। एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तनहा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. 98.3 Mirchi. It's hot.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है। हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: समटाइम्स एक फिल्म अच्छी होती है, समटाइम्स एक एक्टर कमाल का होता है, लेकिन समटाइम्स किसी सीन को हमारे दिल में अगर कोई परमानेंट बनाता है तो वो होता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड रहमान डकैत को देखने के लिए हम सब बेचैन थे, और इसलिए इस हफ्ते मैंने देखी इक्का। सनी पाजी बैक एज अ लॉयर एंड अक्षय खन्ना बैक एज रहमान डकैत। इट वॉज वियर्ड वॉचिंग हिम प्ले समथिंग सो सिमिलर। लेकिन एक और बात है जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, कुछ सीन्स सच में बहुत अच्छे थे लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने उन्हें वो एहसास ही नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तब मुझे समझ आया बैकग्राउंड्स को सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, वो इमोशंस का डायरेक्टर होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये रहना है तेरे दिल में का वो आइकॉनिक सीन है जहां माधवन दिया मिर्जा से अपने प्यार का इजहार करते हैं समंदर के सामने। पहले मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा लेकिन टोटली गलत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: सुनने में अजीब लगा ना, डायलॉग वही था, एक्टर्स भी वही थे, हर लव्स भी वही था, बस म्यूजिक गलत था। अब बिल्कुल वही सीन, बिल्कुल वही डायलॉग, लेकिन उस बैकग्राउंड स्कोर के साथ जिसने उस मोमेंट को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: Now you feel it, right? You feel it in your heart. पर देखा आपने, सीन नहीं बदला, एहसास बदल गया। और शायद इसलिए सिनेमा पहले आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। My special request of the week उसी फिल्म से है, इसका बैकग्राउंड स्कोर आज भी मोहब्बत की डेफिनेशन लगता है।
2: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।
1: Number 5.

0: हर बार जब कोई गाना सुपरहिट होता है हम मान लेते हैं कि उस गाने के सिंगर की जिंदगी भी बदल गई होगी, लेकिन बॉलीवुड का हिसाब किताब इतना सीधा नहीं होता। नाउ गुरु रंधावा का कहर फ्रॉम धमाल 4 इस हफ्ते नंबर 5 पर है और नंबर 4 पर है ये नंबर 4। पुराने गाने का नया वर्जन एंड समथिंग सिमिलर ऑन नंबर 3 एज वेल इज फ्रॉम कॉकटेल 2 एंड ये दोनों कॉकटेल फिल्म्स का सबसे लव्ड गाना है। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ चार्ट्स ही नहीं जीते, दिल भी जीते। तुम ही हो बंधु कॉकटेल 2 का वो गाना जिसने कविता सेठ की आवाज को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा गाना देने के बाद भी प्रीतम दा और कविता जी की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ काम ही नहीं किया। एंड मे बी दैट्स व्हाई हॉलीवुड इतना अनप्रिडिक्टेबल है। कभी ये गाना आपको हमेशा के लिए एवरग्रीन बना देता है और कभी वही गाना आपका सबसे बड़ा तोहफा भी बन जाता है और आखिरी भी। सुनिए खुद कविता सेठ से जब वो बता रही हैं कि तुम ही वो बंधु गाते वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था।
1: तो वो गाना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरे लिए बहुत हाई स्केल था, मेरी बहुत ही मिड लो टिम्बर और लो मिड टिम्बर वॉइस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे गाऊंगी। तो मैं जब जा भी रही थी, रस्ते में थी, तो मैं दादा को फोन करके बोली थी, मैंने कहा दादा मैं कैसे गाऊंगी, बहुत हाई है मेरे लिए, बहुत हाई रेंज में। बोले तुम आओ बस स्टूडियो सब चमक कर लोगी तो हो जाएगा, सब आ जाओ बस तुम। बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत डर लग रहा था कि उस दिन कैसे गाऊंगी। लेकिन काफी सारे टेक्स देने पड़े क्योंकि वो एक एक लाइन करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जब रिकॉर्ड हो गया मैंने घर आके बच्चों को बताया ही नहीं, तो जब उसके प्रोमोज आना शुरू हुए उसमें मेरा और नीरज श्रीधर का नाम लिख करके आ रहा था तुम ही हो बंधु, तो दोनों बोल रहे ये आप कब गा के आए, अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है।
0: देखो अच्छे गाने कभी रिटायर नहीं होते, हर जनरेशन उन्हें दोबारा अपना ही लेता है और इसीलिए इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 एंड कॉकटेल 1 का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर संग बाय नीरज श्रीधर एंड द लवली कविता सेठ दिस इज तुम ही हो बंधु सखा तुम ही नंबर 3।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 2.

कदर नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। Can you believe it? That War in 2019 was his last big blockbuster, and maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, they have some major acting chops, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची डॉट 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची टॉप 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ड ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend and this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard and World Cup Final Weekend Special finally begins. One more night to

बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। Legends don't ask for attention, they own it. Like we own the attention at Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, all you own. Welcome guys.

एंट्री बाय स्पेन इन द फिनाले। लामिन यमाल ने पेनल्टी जीती, माइकल ने फिनिश किया और पेड्रो पोरो ने गेम सील कर दिया। सही बोला था मैंने, टुडे स्पेन विल बी टुमारो स्पेन फॉर फ्रांस।

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक क्लब मिर्ची जारी है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

केवल डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो ऑन द गट, सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन, लामिन यमाल। एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो ऑन द गट, दिस इज द

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूट आउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो मिडनाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट टू व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyon Tika.

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन थिका आपके साथ। इस बार स्टेडियम में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला गया, कल्चर्स मिले, चांस मिले, टीयर्स मिली, हग्स मिली। इसीलिए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन तो क्लब मिर्ची पे बनता है। इसीलिए दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लेट्स गो।

मैजिक शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

इस बार सिर्फ स्टार्स नहीं चमके, ब्रेकआउट प्लेयर्स ने भी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। हर वर्ल्ड कप एक नया पोस्टर बॉय देता है और 2026 भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लेट मी नो योर पोस्टर बॉय ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फाइंड मी ऑन सोशल्स। आई गो बाय ओयोंतिका, AYANTIKA।

चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

फाइनल सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, लेगेसी के लिए भी होगा। कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ लोग हिस्ट्री लिखेंगे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर दिगा। द वेट इज फाइनली ओवर।

और पूरी दुनिया अब वेट कर रही है, सिर्फ एक रात बाकी है, फिर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेज रोशन होगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका एंड वी आर सेलिब्रेटिंग।

मंडे को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन फुटबॉल डिस्कशंस ऑल टाइम हाई। फाइनल के बाद हर फैन के पास एक स्टोरी जरूर होगी। चीयर्स टू ऑल ऑफ दैट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। फॉलो रिचर्ड, ही गोज बाय डीजे रिचर्ड ऑफिशियल।

90 मिनट्स या शायद 120, शायद पेनल्टीज, लेकिन गारंटी सिर्फ एक है, संडे मिडनाइट के बाद एक नया चैंपियन होगा और हम सब उस मोमेंट के गवाह होंगे। और इस एक्साइटमेंट का परफेक्ट साउंडट्रैक क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड राइट हियर राइट नाउ।

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड, एंड दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड, एंड वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल, वन मोर नाइट टू कवर।

क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गॉट। सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन, लामिन यमाल। एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गॉट। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। लेजेंड्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे ओन इट, लाइक वी ओन द अटेंशन एट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन तिखा। वेलकम गाइस।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका। लेट्स गो।

एम्बापे और फ्रांसिस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयोंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड मिर्ची।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट? जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका

स्टेट्स ने नहीं बनाई उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। लेट्स गो।

0: Energy. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
2: On a ride.

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड, एंड दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड, एंड वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल, वन मोर नाइट

क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गा। सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल। एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गा। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। लेजेंड्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे ओन इट, लाइक वी ओन द अटेंशन एट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन तिखा। वेलकम गाइस।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो इंतकाल। लेट्स गो।

एम्बापे और फ्रांस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड मिर्ची और

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट? जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। लेट्स गो।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

बस तुम रहते हो।

ಪದ ಪದ ಗಮ ಸಗಮ ಪದ ಪದ ನಿ ಸ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸ.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: शो माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला क्या था, बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न। यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ। यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड। बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज ट्राइंग टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर। मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
2: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
0: Welcome, Akshata.
3: Yeah.
0: तो अक्षता का question was about सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है, ये traditional color है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। Normally जो male gods होते हैं उनको लाल रंग very rarely दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो prosperity लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.
5: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों बताएंगे देवदत्त.
4: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है. हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके. हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा. इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा. प्रत्येक घर परिवार के लिए यह एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है. श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: हाय
3: हाय, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस, ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st century इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: ये नाखून और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम भी तो कभी बच्चे हुआ करते थे और हम कब बड़े हो गए हमें भी नहीं पता लगा यार। छोड़ो हमारे बड़ों की बातें तो वाकई में, क्योंकि याद है आपको वो टाइम जब हम एज किड्स अपने सिबलिंग से एक रिमोट के लिए लड़ा करते थे। जस्ट इमेजिन, एक रिमोट के लिए, और हमने एक सफर तय किया है यार, फ्रॉम रिमोट के लिए लड़ना विद आवर सिबलिंग्स टू नाउ वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऑल बाय आवरसेल्व्स। पहले सब इकट्ठे होके साथ में बैठ के टीवी देखा करते थे, तो एक रिमोट पे फाइट होती थी कि कौन सा चैनल लगेगा, किसका शो देखने को मिलेगा, कौन सा वक्त हो रहा है और किसका शो मिस हो रहा है। इन सारी चीजों पर लड़ाइयां होती रहती थी और घर में ना रौनकें लगी रहती थी। अब ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने टाइम पर आते हैं, अपना अपना शो देखते हैं और चले जाते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। इनफैक्ट कितने घरों में तो हाल ये भी है कि अब बहन भाई जो है वो एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने अपने शोज देख रहे होते हैं और यही मिस कर रहे होते हैं कि हाय ये एक रिमोट जिस पर आज पूरी तरीके से मेरा हक है उस पर सबका हक हुआ करता था और सब उस हक के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज बड़ा बुरा सा लगता है यार जब एक पूरा रिमोट हमारे ही हाथों में और उस पर कोई लड़ने वाला नहीं होता, और बन जाती है हमारे दिल की एक कहानी जिसका नाम होता है किस्सा रिमोट का। चलो जी, विद दिस मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना, मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रामगोपाल वर्मा ने बॉलीवुड फिल्म को बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसे हाथों में लिया, हथेली पर रखकर ताली बजाई और फिर ये मसाला खा गए, और उसके बाद उन्होंने बनाई द मूवी भूत।
1: मिर्ची VCR।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। भूत एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड टाइप कुछ नहीं था, ना गाने, ना 2.5-3 घंटे की लंबी फिल्म। मूवी की स्टोरी इज बेस्ड अराउंड द हीरोइन और मूवी एक हॉरर स्टोरी थी एंड द फिल्म वाज अ सक्सेस। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बड़ी स्पूकी पोस्टर्स बनाए गए थे ताकि हम जैसे लोग उन्हें देख कर बोले, यार ये तो बड़ी डरावनी फिल्म लग रही है, बड़ा मजा आएगा इसे देखने में। और पूरी मूवी देखते हुए ना मुझे जरा डर नहीं लगा था, लेकिन एक पॉइंट पर मेरी चीख निकल गई थी और थिएटर में एक लड़कों के गैंग को इस बात पर ना बड़ी हंसी आई थी और मौका मिल गया था उन्हें कल्ले फाड़ फाड़ के हंसने का। वो सीन जब उर्मिला आईने में खुद को गौर से देख रही थी और फिर वो आईने के करीब जाती है, फिर और करीब, वो अपना हाथ उठाती है आईने को छूने के लिए और एकदम से डोरबेल बज जाती है। आई एम श्योर रामगोपाल वर्मा ने ये सीन इसी माइंडसेट से डायरेक्ट किया होगा कि देखने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, और मेरी तो हो गई। आपकी हुई कि नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल मुझे ये पता है कि कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको पता है, भूत की सक्सेस के बाद राम गोपाल वर्मा ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गए बॉलीवुड के एक्टर्स, अब मैं हॉलीवुड के एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। 2003 में जब भूत हिट हो गई तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉलीवुड एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाएंगे, एंड द फिल्म वाज टाइटल्ड विदिन। इट हैड टू बी रिलीज्ड बाय लेट 2006, एंड इंस्टेड ऑफ अ मुंबई अपार्टमेंट द फिल्म वाज टू बी सेट इन न्यूयॉर्क इन एन अपार्टमेंट इन मैनहट्टन। इस फिल्म में कोई इंडियन एक्टर नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा ने इस कास्ट की डिटेल्स बताने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। परसेप पिक्चर कंपनी वाज टू प्रोड्यूस द फिल्म एट अ बजट ऑफ $6 million। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताते हुए इतना हाइप दिया, उतना ही हाइप इस फिल्म को मिला, एंड देन द मूवी गॉट शेल्व्ड। मूवी गॉट शेल्व्ड का मतलब, अरे सिंपल, मूवी को ताक पे रख दिया। उसके बाद तो वो ना उतर पाई, ना उसे किसी ने उतारा, वो वहीं की वहीं ठहर गई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: आजकल स्ट्रेस इतना है कि बालों ही बालों का गुच्छा नजर आता है, बट वो स्ट्रेस फ्री टाइम भी था जब कहानियों का गुच्छा आया करता था।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और संडे की सुबह ब्रंच टाइम पर टाइम हुआ करता था

भारद्वाज ने ही बनाया है, लिखा गुलजार साहब ने और म्यूजिक कॉम्पोजिशन विशाल भारद्वाज का है। ये तब की बात है जब विशाल सिर्फ गाने कंपोज किया करते थे। और कहानियों के गुच्छे के बारे में सोचने के बाद ना, अब मेरा मन आज की मेरी जो टू डू लिस्ट है ना, उसमें तो नहीं लगने वाला यार। आपका भी नहीं लगेगा ना, तो रहने देते हैं ना यार। आज में वापस आने में अभी टाइम है, तब तक हम 90s में ही रहते हैं ना, मेरे यानी सारा के साथ ऑन मिडडे मोहब्बत। तो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी का एक और कमाल। स्टे ट्यून्ड।

कहानियों के गुच्छे का। आज उस टाइम के बारे में सोचो ना तो अनरियल लगता है कि ये टाइम भी हमने जिया था। जब एक कहानी के गुच्छे का इंतजार करते करते संडे की आधी सुबह गुजर जाया करती थी, क्योंकि ये शो ना थोड़ा लेट आया करता था, बिल्कुल संडे मूड में। बट डू यू नो, इस शो के गाने को भी फेमस डुओ गुलजार साहब और विशाल

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कल होना हो का इंट्रो शॉट तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि प्रीति जिंटा न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही हैं, अपनी मॉर्निंग जॉग करती हुई जा रही हैं। वेल, हियर मी आउट, दैट वाज नॉट एक्चुअली प्रीति जिंटा।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हुआ ये था कि प्रीति को उस वक्त पैर में लग गई थी चोट, तो वो भाग नहीं सकती थी और ये सीन शूट करना था, तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि प्रीति की जगह उनकी बॉडी डबल को दौड़ा देते हैं। और वैसे भी शूट तो बैक का ही था, शक्ल तो दिखानी ही नहीं थी। तो द वुमन रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन द इंट्रो शॉट ऑफ कल होना हो इवेंचुअली वाज नॉट प्रीति एंड समवन एल्स। एंड वेल, यहाँ इस फिल्म में प्रीति की जगह भी किसी और को होना था, एंड दैट वॉज करीना कपूर। बट क्या है कि करीना ने इस फिल्म के लिए पैसे कुछ ज्यादा चार्ज करने की कहा था, जिसकी वजह से करण जौहर उन्हें हायर नहीं कर पाए एंड इवेंचुअली प्रीति जिंटा केम इनटू द पिक्चर। और इसी वजह से करीना और करण के बीच में भी काफी डिफरेंसेस आ गए थे, जो कि लेटर ऑन द सॉर्ट हो गए थे। लेकिन ऑन द सेट्स ऑफ कॉफी विद करण, करीना ने ये बात जरूर कही थी कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर था कि वो कल होना हो नहीं कर पाए। लेकिन गेस व्हाट, और किसने कल होना हो की? अर्जुन कपूर, एक्टिंग में नहीं, डायरेक्शन में। ही वॉज वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन द फिल्म। चलो जी, विद दिस मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को आगे खींचते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आशिकी का ये गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वेल, एक्चुअली हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि धीरे धीरे से ही सही, लेकिन अब समझ में आया है कि ये गाना ओरिजिनल नहीं है।
2: मिर्ची, थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या गाना था यार, कुमार सानू की आवाज में, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में। वेल, मैं गाऊंगी तो गाने की ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली अब जब बात में से बात निकली है तो यहाँ पर भी काम कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, गुल खिलाए गए हैं और वो भी कट कॉपी पेस्ट के। वेल, ये गाना इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ एन इंग्लिश सॉन्ग जिसे गाया था जॉयस सिम्स ने। और ये गाने की धुन ही नहीं, इस गाने की लिरिक्स आर ऑल्सो अ कॉपी फ्रॉम दिस इंग्लिश सॉन्ग विच इज कॉल्ड कम इन टू माई लाइफ। सुनिए जरा।

हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये कॉपी एकदम सही कॉपी लग रही है आपको? वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत है, तो क्या आपके हिसाब से अकल इस्तेमाल की गई है इस कॉपी में? डीएम करिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी हो रही थी ना, तो यार ये शादी की कवरेज जो है ये तो हर एक न्यूज चैनल पर नजर आ रही थी, लेकिन इस शादी के अलावा एक बर्बादी की कवरेज भी चल रही थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आपको याद नहीं है ना, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं वो टाइम जब हम सब वर ग्लूड टू द टेलीविजन स्क्रीन्स वाचिंग अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की शादी का कोई तो भी फुटेज जो हमें दिख जाए। वो उनके बंगले के बाहर के ही फुटेजेस होते थे ज्यादातर, तो अंदर क्योंकि एक्सेस नहीं था ऑफकोर्स प्रेस को, लेकिन हम तब भी टेलीविजन पर चिपके हुए थे कि यार कुछ तो दिख जाए, और कुछ तो दिख जाए, कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है।

सा सेलिब्रिटी जा रहा है, कैसे लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और जब बारात की फुटेज दिखाई तो सब पागल ही हो गए यार। मुझे तो आज भी याद है अभिषेक बच्चन की शेरवानी और उनके साफे पे वो जो कलगी थी ना, इतना खूबसूरत था ना वो ब्यूटीफुल सा ब्रूच जिसको कि कलगी कहते हैं, जो उन्होंने अपने साफे पे पहना हुआ था। एनीवेज मैं काफी बह गई हूँ उस दिशा में, लेकिन आते हैं इस दिशा में जहाँ पर उनकी शादी के फुटेज के अलावा एक और बर्बादी का फुटेज था, एंड दैट वाज जानवी की बर्बादी का फुटेज। नहीं, हम जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं। देयर वाज दिस अनदर जानवी जो कि अभिषेक बच्चन की शादी के वेन्यू के बाहर हो हल्ला मचा रही थी, और उसका ये क्लेम था कि अभिषेक एंड जानवी आर इन लव, देव गॉटन मैरिड एंड देव हैड अ रिलेशनशिप एंड पता नहीं क्या क्या करके उस बंदी ने जो ड्रामे करे। हमें लगा था अगली राखी सावंत आ गई है, ये बंदी अभिषेक बच्चन के साथ काम कर चुकी थी। वो गाना नहीं था दस बहाने करके ले गए दिल, उस गाने के अंदर जो बैकग्राउंड में डांसर्स काम कर रहे हैं उनमें से एक वाज दिस बंदी जानवी। एंड हुआ क्या, वेल हुआ कुछ भी नहीं, वो एक दिन था, दो दिन ज्यादा से ज्यादा जब इस बारे में हो हल्ला मचा, उसके बाद ये बंदी कहां गई पता ही नहीं लगा। एंड देन कट टू वो टाइम जब जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी का लॉन्च हुआ, एट दैट टाइम हमने ये नाम सुना था। इस दौरान हमने कहीं पर भी इस जानवी का जिक्र तो नहीं सुना था यार। अगर आपने कोई जानकारी हासिल करी है इस बंदी के बारे में अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव, तो डू लेट मी नो, ये गॉसिप ऑन एयर भी शेयर की जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर फैंटम वाली मीठी सिगरेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: बचपन में बुरी नहीं मीठी आदत थी तुम्हें पीकर ना स्वैग मारना और फिर आईने को ताड़ना ये देखने के लिए कि होठ पर तुम्हारी रेड एंड व्हाइट रंग की लाली लगी कि नहीं। बाकी जब तुम्हें गर्मियों में पिया करते थे ना तो उंगलियों के पसीने से तुम पिघल जाया करती थी, और ऐसे पिघलती थी जैसे कि आज मैं अपनी बहन के मनाने पर भी नहीं पिघलती हूँ यार। एक डब्बा तुम्हें लाया करते थे और लंबा चलाया करते थे, और तुम्हें होठों के बीच दबाकर 80s के किसी विलन की तरह लुक देते हुए एक्ट तो ऐसे करते थे जैसे कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत हो हम। आज जब अडल्ट्स को स्मोक करते हुए देखती हूँ ना तो कभी कभी हंसी छूट जाती है कि कभी हम ये बनने की कोशिश किया करते थे तुम्हें उंगलियों में दबाकर और अपना स्वैग दिखाकर। और आज जो दोस्त तुम्हारी बड़ी बहन यानी कि असली सिगरेट को जलाते हैं ना, अब हम उन्हें इस आदत को छोड़ने को कहा करते हैं। बचपन का लेंस बड़प्पन के लेंस से कितना डिफरेंट होता है नहीं। तुम्हारी खास मिठास को याद करती हुई तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म स्वदेश इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, ये गाना मुझे गाना कम और जुगलबंदी ज्यादा लगती है बिटवीन द महारथी सिंगर्स, हाँ, हरिहरन, कैलाश खेर एंड उदित नारायण। और इसी वजह से ये गाना जो है ये फिलोसफिकल भी हो जाता है और साथ ही साथ ना थोड़ा सा नाटक, नौटंकी और शैतानी भी इस गाने के अंदर सुनाई देती है। बट ये गाना ना बड़ी ही सही बात कर रहा है। इट ऑल्सो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, जहाँ पर एक बंदा इज टोटली पॉजिटिव अबाउट लाइफ एंड वट हैज टू हैपन इन फ्यूचर, एंड द अदर वन इज अ लिसनर जो अभी कंफ्यूज है कि यार मेरी लाइफ होने क्या वाला है। तो बंदा जो पहला वाला है, जो पॉजिटिव वाला बंदा है, वो बड़े सही तरीके से कहता है कि ये रास्ता है, कह रहा अब मुझसे, कि मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। अगला कहता है कि यार दिल को है क्यों ये बेताबी, और किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। और यहाँ पर दिल लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपने उस इंसान के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, और कभी कभी हमारा दिल कह रहा होता है ना कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कोई आने वाला है। एक आहट सी आपको महसूस हो रही होती है बिना उस इंसान के आए और बिना आपके ये जाने कि वो इंसान कौन होगा। एंड दिस इज अ फीलिंग जो उसी को पता है जिसने कभी महसूस करी। और अगर आप वो इंसान हो ना तो मुझे DM करके अपनी स्टोरी जरूर बताना। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बचा।

गुड़ किन्ने खा लिया गुड़ वाली चा किन्ने पीती नाला किन्ने खिचया खिच के मर किन्ने सीटी।

झूमे गाओ हरेला उन चबाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: Mirchi. It's hot.
1: I like the way you move right there.

Mirchi. It's hot.

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय।

कि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।